0: ताकि पासन लेंगे सुमले पुनी कुसु से तां छवा लमरो लुंग दने पापा दे छवा लमरो छुचु चोंगे तशि मिंदे शिया इन ले ओरे नियां पुने तिरा
1: लेसे तो छेना
0: कि ता फंदे जि छि छवा
1: नो लेसे
0: लेसे किना किगा ते पे नाम यु बितावा गुतुला छि मोमो लोसा नाम लेंगे छि इन कुगा ता खा मामा नारा ना छि तिलमला
2: Tini,
0: 这里准备的准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你们给上来了不要用了那些了你将将这里准备这里去你